शाहजहान में शख्सियत छे मैं देखना जनाब मैं किस हवाले से बात कर रहा था जो लेकिन कम देना कम जाना खबर शुरू कम जाना खबर शुरू कम अच्छा कुछ थोड़ी सी उर्दू में बात करते हैं दिन फिर हम पश्तो की तरफ आएंगे देखें दिल के तमाम तरह फैसले कबूल कर लेने चाहिए क्योंकि दिल हमेशा जो है ना लफ्जों में अपनी बात नहीं कहता कभी वो खामोश रहकर भी जो है ना बहुत कुछ समझा देते हैं सिखा देते हैं कभी किसी शख्स की मौजूदगी में दिल को सुकून मिलता है जो दुनिया की हजारों आसाइशों या मतलब हजारों खुशियां भी मतलब इंसान को नहीं दे पाते कभी किसी की आवाज महज आवाज नहीं रहती बल्कि जो है ना दिल के किसी वीरान गोशे में उतर कर रोशनी बन जाती है और कभी किसी के साथ चंद लम्हे गुजार कर यूं महसूस होता है जैसे बरसों से इसी लम्हे का इंतजार था दिल अजीब शय है अजीब किस्म की शय ना दिल है एक बहुत ही अजीब किस्म की शय है ये खदीजे कुछ कम देना डाटा पे प्रोग्राम शामिल कुछ है

तो अगर दिल किसी को चाहता है उसे मोहब्बत से चाहता है, अगर दिल किसी के लिए दुआ करते हैं उसे खुलूस से दुआ दो, अगर दिल किसी के इंतजार में मौजूद है, अगर किसी के इंतजार में है तो उसे या उस इंतजार को बेमानी वक्त मत समझो, और अगर दिल किसी को अपना मान चुका है तो इस एहसास की कदर करो, क्योंकि दिल हर किसी के लिए नहीं धड़कता, हर चेहरे पर नहीं ठहरता, हर आवाज पर नहीं मुस्कुराता।

याद रखिएगा लिसनर्स के दिल हर किसी के लिए नहीं धड़कता, हर चेहरे को देखकर नहीं ठहरता और हर आवाज सुनकर नहीं मुस्कुराता। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक आती हैं और गुजर जाती हैं। आवाजों के हवाले से बात हो रही है ना, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक आती हैं और गुजर जाती हैं, मगर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। एक शख्स की आवाज हजारों आवाजों के दरमियान भी अलग महसूस होती है। शोर में अचानक कोई अपना नाम लेकर पुकार दे और ऐसी आवाज में ना जाने क्या जादू होता है कि इंसान मसरूफ होकर भी रुक जाता है, उदास होकर भी मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा कर भी या खामोश होकर भी दिल ही दिल में बहुत कुछ कहने लगता है। दिल हर किसी की बात पर नहीं धड़कता, लेकिन जिसकी बात दिल को छू जाए फिर उसके चंद लम्हे भी पूरी दास्तान बन जाते हैं। एक छोटी सी तवज्जो पूरा दिन बदल देती है। उसका एक पैगाम चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है और उसकी खामोशी भी आम खामोशी नहीं लगती। अच्छी बात है ना कि दुनिया में लाखों लोग होते हैं, हजारों आवाजें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, हजारों आवाजें गर्दश कर रही होती हैं, मगर दिल सिर्फ एक आवाज को पहचान लेता है। वो आवाज जो सुनाई कम देती है, महसूस ज्यादा होती है। याद रखिए लिसनर्स के, ताहिर यहाँ ये बात कहना चाहेगा कि कभी कभी किसी की आवाज में एक ऐसा सुकून छुपा होता है कि इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। कभी कभी किसी एक आवाज में ऐसा सुकून छुपा होता है कि इंसान अपने सारे दुख भूल जाते हैं, वो सारे हेलो उसे याद आने लगते हैं। और वो सिर्फ हेलो कहे तो भी जो है ना, दिल को यूं लगता है जैसे किसी ने थके हुए वजूद पर मोहब्बत से हाथ रख दिया हो। वो चंद लम्हे बात करे तो वक्त जैसे रुक जाए और फोन बंद होने के बाद भी उसकी आवाज देर तक दिल के अंदर गूंजती रहती है। फिर इंसान खुद से पूछता है कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या है जो शायद जो है ना बहुत बहुत ज्यादा होता है मोहब्बत। जवाब इसका ये है कि शायद बहुत ज्यादा होता है मोहब्बत। मोहब्बत में इंसान हर आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ जो है ना उस आवाज को सुनता है जिसमें उसे अपनापन महसूस होता है, जिसमें उसे फिक्र सुनाई देती है, इंतजार महसूस होता है, खलूस नजर आता है और वो खामोश मोहब्बत महसूस होती है जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सामने वाला कुछ खास नहीं कहता, मगर उसके लहजे में छुपी हुई एक मामूली सी तब्दीली भी दिल को समझ लेती है। मामूली सी तब्दीली भी दिल की समझ में आ जाती है, दिल समझ लेता है। वो खुश हो तो दिल खुश हो जाता है, वो उदास हो तो बेचैन हो जाता है, वो खामोश हो तो दिल सवाल करने लगता है। और लिसनर्स,

अच्छा लिसनर्स, आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को साथ साथ शामिल करते हैं। अगर आप मुझे कॉल्स करना चाहते हैं, लाइव शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे लाइव कॉल्स कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ म्यूज़िक भी प्रोग्राम में शामिल कर दूँ। और चूँकि यहाँ हमारे फर्स्ट पीसी पे, जो फर्स्ट नंबर पे पीसी है, उसमें इंटरनेट प्रॉपरली उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से जो है ना इसे काम करना चाहिए। पर कैफ मैं दूसरे पीसी से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर दूँ। अगर आप मुझे कॉल्स करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं 09382804595। और इसी के साथ साथ ये ना कि अगर मैसेज करना चाहें, मैसेजेस की सूरत में शामिल होना चाहें, तो 0307 07 00 666 0307 27 00 666। जीशान अली जरगर की आवाज में आप लोगों के लिए हम एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। आई होप के ट्रैक वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कौन सा वाला ट्रैक आप लोगों के लिए शामिल किया जाए जी, चलें ये चेक कर लेते हैं। अगर प्ले हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम इसे पूरी पूरी कोशिश करेंगे प्ले करने की जी। एंड यार ये क्या मौजरा है और ये क्या ड्रामा है कि ये ट्रैक क्यों शामिल नहीं हो रहा और क्यों प्ले नहीं हो रहा।

और अगर मैं उर्दू में इस लाइन की जो है ना कोई थोड़ी सी ट्रांसलेशन करूं तो ये करना चाहूंगा कि झूमता जा रहा हूं मैं जाम की गर्दश में, कायनात है और मलंग शहजादी मैं तेरी शामों पर खुद को वार चुका हूं। और आगे जो है ना इसकी कुछ थोड़ी सी मतलब मजीद वो क्या कहते होते हैं ट्रांसलेशन करते हैं जी।

बहुत ही जबरदस्त जो है ना ये ट्रैक है जी श्याम मलंगे भाई करण खान. वो क्या कहते होते हैं ट्रांसलेशन करते हैं जी.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: That really does play today's best music with 30-minute all-hit power play.

0: We'll be back, right after the commercial.
1: एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन।

0: तपोस्ते आगे जी सिफर 9 2 80 495 निकाल गुरुम सूखती रहा सर। असलामुअलैकुम। असलामुअलैकुम। खजी वालेकुम असलाम। डेरा जात मनना टाइम रा सर कम दे
1: जुनून दे सुरूर दे
0: 0938-280-495। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। मुझे फरमान भाई से
0: खैर खैर दे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो खबर कवे दे कम जैना
2: जावेद
0: सवाबई ने जावेद भाई तास तो प्रोग्राम के हर कले वायु डेर तमन्ना फर्स्ट टाइम कॉल कर दे जावेद भाई से कार कवे
2: बस
0: हाँ उजगार बोली यही शुक्र दे बस तालीम हम हुनर दे और ख तालीम। जावेद भाई प्रोग्राम टोल बावरे द प्रोग्राम दरबान संग लेगी यकीन कर मशरान डेर ज्यादा खान कही गए ना बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह तासुरा प्रोग्राम की

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

प्रोटीन, कोजिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, पेंटोनोल, विटामिन B5, एलोवेरा, आउली को राइस एक्सट्रेक्ट, नुजका, बेलेडोना तायवाजी, जाफरानी क्रीम, मवाई, दाद जाफरानो

के मुकतबल में शुक्र अली सलामुन डॉक्टर भाई संगई खई अजाने खदा और डॉक्टर भाई जमा खोर जाफरानी क्रीम यूज कई पमख औ पपो जबानी तीर सरयू कसम दे तीर सरी औ पपोजी औ पमख बानी तीर सरयू कसम दे बीखी ना सॉरी कसम दे बाई पुष्प गुरु की ओर लखतम कल मी हानिया अफरीदई ओ जका खोर तो गोर बार बार राय दे तो वेले की असल बेलडोरा साफरानी क्रीम दकम चमंग यो बेज एनी द लसू लाकु दानो बेज लाले ओसुर तकीन बची असुगुरे कॉस्मेटिक्स आग मजकी आग कॉस्मेटिक्स मजा की चीज दुकानदारों पर सीधा टूपू ने वही दुकानदारों पर सीधा दरस गोबल रागस्ती हुई अब्दुल वहाब सुई सलाम नौकर से बो